0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16

কানে কথায় গোল্ডেন সময়, আপনি শুনছেন 100.1 FM গোল্ড, 100.1 FM গোল্ড।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सभी का स्वागत है 100.1 एफएम गोल्ड खरा सुना पर। दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 7 और आपका दोस्त अंकित आ चुका है आपके साथ। जी हां, लेकर आया हूं मैं कार्यक्रम सुहानी सुबह। रहने वाला हूं एक घंटे तक आपके साथ, यानी 8 बजे तक, और लगातार सुनाने वाला हूं कुछ सुपर हिट ओल्ड बॉलीवुड ट्रैक्स, यानी कुछ लेकर आया हूं पुराने हिंदी फिल्म गीत आपके लिए। लेकिन सिर्फ गीत ही नहीं होंगे हमारे इस कार्यक्रम में, होंगी कुछ रोचक जानकारियां, करेंट अफेयर्स, करेंट इवेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी। इसके साथ होंगी आज की इतिहास, और आखिर में भी होगा आपके लिए मौसम का हाल। तो जी हां दोस्तों, आपका दोस्त अंकित इन सारे चीजों के साथ हाजिर है आपके एफएम गोल्ड स्टूडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम इस पहले गीत के साथ।

फिल्म जवानी दीवानी से दोस्तों आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। ये गीत संगीत से सजाया था राहुल देव बर्मन ने, बोल से सवारा था आनंद बख्शी ने। आई दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे किया था वादा कि बताऊंगा कुछ जानकारी, तो चलिए शुरू करता हूं। अन्नपूर्णा योजना 1.9 करोड़ से अधिक खाते में 3,000 रुपये भेजने की प्रक्रिया शुरू, और 1.760 करोड़ आवेदनों में से 26 लाख खारिज। राज्य सरकार की अन्नपूर्ण योजना के तहत योग्य लाभार्थियों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता भेजने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। महानगर के नेताजी इंदौर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोपहर 1 बजे से राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रत्येक पात्र लाभार्थी के खाते में राज्य सरकार 3,000 रुपये भेज रही है। निष्पक्ष और निर्भीक प्रशासनिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बुधवार शाम को महानगर के अलीपुर स्थित धन्य धान्य ऑडिटोरियम में WBCF अधिकारियों के एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि पश्चिम बंगाल सिविल सेवा के अधिकारी हमारे राज्य के प्रशासन की रीढ़ है। दिन प्रतिदिन जमीनी स्तर पर उनके अथक प्रयास ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पश्चिम बंगाल के हर घर और हर व्यक्ति तक पहुंचे। और कच्चे तेल के दाम घटने से मिली राहत, छोटू सिलेंडर 13 कमर्शियल से 183.50 सस्ता। पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव कम होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बीच बुधवार को घरेलू बाजार में बड़ी राहत मिली है। तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्य कमर्शियल LPG और विमान ईंधन यानी ATF की कीमत में भारी कटौती की घोषणा की है। इस वर्ष 6 बार की लगातार बढ़ोतरी के बाद पहली बार 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडर के दाम 183.50 रुपये घटाए गए हैं, जिसमें अब दिल्ली में इसकी कीमत 2,930 रुपये प्रति सिलेंडर रह गई है। इसके साथ ही आम उपभोक्ता और छोटे दुकानदारों के लिए 5 किलोग्राम वाले छोटू LPG सिलेंडर की कीमत भी 13 रुपये घटाकर 808.50 रुपये कर दी गई है। हालांकि घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये तो थी कुछ जानकारियां, अभी बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ, और अगले गीत का आपको बताऊंगा मैं खेल से जुड़ी जानकारी। तो बने रहिए 100.1 FM गोल्ड खारा सुना पर, आपके साथ है आपका दोस्त RJ अंकित।

में ये गीत संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने, बोल से सवारा था आनंद बख्शी ने। आई दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि अब बताऊंगा आपको खेल से जुड़ी कुछ जानकारियां, तो शुरू करता हूं। विश्व कप में 48 देश 10% फुटबॉलर अकेले फ्रांस और नीदरलैंड से दोस्तों। जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग खबर है ना ये। फुटबॉल की दुनिया में सबसे वैश्विक खेल कहा जाता है, लेकिन फीफा विश्व कप 2026 ने इस पहचान को एक नया आयाम दे दिया है। इस बार मैदान पर सिर्फ देशों की टीम नहीं उतर रही है, बल्कि प्रवास पहचान और जड़ों की कहानियां भी खेल रही है। विश्व कप में शामिल 1248 खिलाड़ियों में से लगभग 290 ऐसे हैं जिनका जन्म उस देश में नहीं हुआ है जिसकी जर्सी पहनकर वे मैदान पर उतर रहे हैं। टूर्नामेंट का लगभग हर चौथा खिलाड़ी अपनी जन्मभूमि नहीं बल्कि अपने परिवार, पूर्वजों या दोहरी नागरिकता से जुड़े देश की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फ्रांस और नीदरलैंड, इन दोनों देशों के करीब 100 से अधिक फुटबॉलर दूसरे देश से खेल रहे हैं। यह संख्या विश्व कप में खेल रही 48 टीम के कुल खिलाड़ियों की करीब 10% है।

और दोस्तों T20 नंबर वन ईशान देश के पहले कीपर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की 12 महीने से जारी बादशाहत को तोड़ते हुए भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने ICC की ताजा T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बन गए हैं। ईशान T20 रैंकिंग में नंबर वन बनने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज और पहले विकेट कीपर है। उनसे पहले विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा ये उपलब्धि हासिल की है। अभिषेक शर्मा अब दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान तीसरे स्थान पर है। ईशान किशन इस साल की शुरुआत में हुए T20 वर्ल्ड कप पर शानदार प्रदर्शन किया था, जिसका फायदा उन्हें रैंकिंग में मिला है। ईशान ने वर्ल्ड कप के दौरान लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाए थे। तो दोस्तों, खेल से जुड़ी भी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं और अब अगले गीत के बाद दोस्तों आपको बताने वाला हूं मैं आज का इतिहास। तो बने रहिए 100.1 FM गोल्ड खरा सुना पर आरजे अंकित के साथ।

फिल्म साहिब से बपी लहरी और एस जानकी की आवाज में आप सुन रहे थे ये ट्रैक। बपी लहरी का कंपोजिशन, लिरिसिस्ट अनजान। आइए दोस्तों आपको बताऊं 2 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना पर जब 2 जुलाई 1306 में आक्रमण किया तब ये दुर्ग कान्हड़ देव के भतीजे चौहान सरदार शीतल देव के अधिकार में था। 1995 में आंद्रेई ग्रोमी को सोवियत संघ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को 2 जुलाई 1940 ईस्वी को विद्रोह भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। 2004 में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जकार्ता में आपसी बातचीत की। 2006 में इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कप्तान डेविड बेकहम ने अपना पद छोड़ा था। और 2 जुलाई 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो दोस्तों ये तो थी 2 जुलाई की जानकारी। अगले गीत के बाद दोस्तों आपको बताने वाला हूं 2 जुलाई को है प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्मों के बारे में। तो बने रहिए 100.1 FM गोल्ड खरा सुना पर।

0: फिल्म शोले से किशोर कुमार और मन्ना दे की आवाज में आप सुन रहे थे यह गीत आरडी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी के बोल। आइए दोस्तों आपको बताऊं 2 जुलाई को हुए जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 1983 में सुहास एल वाई भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी उनका जन्म हुआ था। 1956 में तूफानी सरोज 13वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे उनका हुआ था जन्म। 1954 में मोहम्मद अजीज भारत के प्रसिद्ध पार्श्वर्य गायक में से एक थे उनका जन्म हुआ था। 1948 में आलोक धनवा प्रसिद्ध जनकवि थे उनका जन्म हुआ था। 1945 में विद्या विंदु सिंह लोक साहित्य के क्षेत्र में जाना माना नाम है उनका जन्म हुआ था। 1941 में आशलता वामगांवकर मराठी और हिंदी फिल्म की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी उनका जन्म हुआ था। 1925 में स्वामी राम भारतीय योगाचार्य थे उनका जन्म हुआ था। 1901 में कालिंदी चरण पणिग्रही प्रसिद्ध उड़िया कवि उपन्यासकार कहानीकार नाटककार और निबंधकार थे उनका हुआ था जन्म। और 1893 में चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी आंध्र प्रदेश के पहले राज्यपाल थे उनका जन्म हुआ था। दोस्तों 7:30 हो चुके हैं, अंकित आपके साथ और कार्यक्रम चल रहा है आपके अपने चैनल पर FM गोल्ड पर सुहानी सुबह। अब रहने वाला हूँ 8 तक आपके साथ सुना रहा हूँ कुछ बेहतरीन गाने आप लोगों के लिए। और अब दोस्तों अगले ट्रैक के बाद मैं आपको बताऊंगा 2 जुलाई को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। तो बने रही 100.1 FM गोल्ड खरा सुना पर विथ मी यानी आरजे अंकित के साथ।
1: सुबह की शुरुआत आपके साथ, सुन रहे हैं सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।

फिल्म याराना से दोस्तों किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन गीत। राजेश रोशन ने सजाया था संगीत से, अनजान ने सवारा था बोल से। आइए दोस्तों आपको बताऊं 2 जुलाई को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। तो 1961 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे अमेरिका उपन्यासकार, लघु कहानी लेखक और पत्रकार थे, उनका निधन हुआ था। 1950 में यूसुफ मेहराली स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक थे, उनका हुआ था निधन। और 1934 में असित भट्टाचार्य भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे, उनका भी निधन हुआ था। बढ़ेंगे अगले गीत की तरफ और अगले गीत का दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं मौसम का हाल। तो बने रहिए 100.1 FM गोल्ड खरा सुना प्यार जंगित के साथ।

मेरे जीवन साथी से। दोस्तों आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गीत आर डी बर्मन का संगीत मजरू सुल्तानपुरी के बोल। आइए दोस्तों आपको बताऊं मौसम का हाल। तो पहले बताता हूं आपको पिछले 24 घंटों के बारे में। तो पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान था 31.1 डिग्री सेल्सियस, जो कि सामान्य से 1.5 डिग्री कम था।

0: न्यूनतम तापमान था 27.3 डिग्री सेल्सियस जो कि सामान्य से 0.6 डिग्री ज्यादा था। अधिकतम आपेक्षिक आर्द्रता थी 96% और न्यूनतम आपेक्षिक आर्द्रता थी 77%। आने वाले 24 घंटों में बादल छाए रहने की संभावना है, गर्जन तर्जन के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। और एक जरूरी सूचना भी है दोस्तों कि 3 जुलाई 2026 से अगली सूचना तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल तट के आसपास और उससे दूर तूफानी मौसम रहने की प्रबल संभावना है, जिसमें हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा और कभी कभी 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 3 जुलाई 2026 से अगली सूचना तक पश्चिम बंगाल तट के आसपास और उससे दूर समुद्र में ना जाएं। तो मौसम के हाल के बाद आइए बदलते हैं हमारे स्टूडियो का मौसम भी और सुन लेते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

फिल्म दीवार से दोस्तों किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। आरडी बर्मन का संगीत, शहीर लुधियानवी के बोल। और दोस्तों देखते ही देखते पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर, आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

फिल्म ब्लैक मिल से किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे एक बहुत ही बेहतरीन गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल। दोस्तों बढ़ेंगे कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ, आखिरी गीत भी होगा किशोर कुमार और एनईटी की आवाज में, और इसी गीत के साथ दोस्तों आपका दोस्त अंकित ले लेकर इजाजत, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों से मिलने वाला हूँ फिर ठीक 11:10 पर कार्यक्रम लू आ गई उनकी याद लेकर इसी चैनल पर। तो सुनते रहिए साथ रहिए 100.1 FM गोल्ड खरा सोना, और अगला कार्यक्रम इस गीत के बाद थोड़ी देर में होने वाला आप लोगों के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए 100.1 FM गोल्ड खरा सोना।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के

0: कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाई ताकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री ताकाची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि EPFO योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य EPF अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, E-पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।

0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिस्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल है। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल डीजल सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय

0: खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले दो दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमेरिका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाया तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanaya Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20

0: शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल है। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं को छोड़कर विध्वंस कार्य और धूल उत्पन्न करने वाले खुले निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार रहें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और ये 28 अगस्त तक चलेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह आज बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

থেকে যায় এই বৃষ্টিতে পাগলা হাওয়ায়, এ মন তোমাকে চায়।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना वर्ष 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर से ये योजना लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजरनेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर

0: लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को कार्यभार संभाला था। वे जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत थे। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल है। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से अपनी हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Vehicles without a valid pollution under control certificate will not be supplied fuel at petrol pumps, CNG and LPG stations across Delhi throughout the year. From 1st November to 31st January, entry of non-Delhi registered vehicles below BS6 emission standards will also be prohibited, with exemptions for CNG and electric vehicles, ambulances, fire services and other essential vehicles. Civil Aviation Ministry has announced that India achieved a major milestone with approval of the country's first private point in space PINS instrument approach procedure for helicopter operations at Undavali Heliport. PINS procedures use advanced satellite-based navigation technology to enable helicopters to conduct safe and precise instrument approaches to heliports that do not have conventional instrument landing infrastructure. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha flagged off the first batch of pilgrims of the annual Sri Amarnath Ji Yatra from the Bhagwati Nagar base camp in Jammu this morning. The 57-day annual pilgrimage officially commences across the twin tracks of Kashmir tomorrow and is scheduled to conclude on August 28. The government issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. According to the sources, the Ministry of Electronics and Information and Technology directed Meta to furnish a detailed explanation on the username feature within 3 days. A series of strong explosions hit Kyiv overnight after President Volodymyr Zelensky warned that Russia was preparing a major strike. Ukrainian officials said Russia fired missiles and drones at the capital, causing fires and damage to residential buildings. Air raid sirens sounded across the city and many residents took shelter in metro stations. IMD has said southwest monsoon is likely to advance over Delhi, Haryana, Chandigarh, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan during the next 2 days. Meanwhile, people in Delhi woke up to refreshing showers this morning. Rain lashed several parts of the city, bringing the much-needed relief from the sweltering heat. In the ICC Women's T20 World Cup, England will face South Africa in the second semi-final at the Kennington Oval in London today. The match will begin at 11 p.m. IST. Winner of this match will face Australia in the final at the iconic Lord's Cricket Ground in London on the 5th of this month. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar, Akashwani se Vishv Darpan ke saath main Farhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल अगले साल 14 जुलाई तक 1 साल के लिए बढ़ाया। ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता दोहा में मध्यस्थ की मौजूदगी में हुई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध

0: चलकर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची इस समय राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। वे जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत थे। श्री मिश्री ने प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के एक मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस सुदर्शनी सेल 4-250 न्यूयॉर्क और सेल बोस्टन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कल न्यूयॉर्क रवाना हो गया है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि यात्रा भारत की समृद्ध समुद्री विरासत तथा विभिन्न देशों के साथ समुद्री सहयोग, मित्रता और सद्भाव को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इससे पहले आईएनएस सुदर्शनी ने ब्लाटीमोर बंदरगाह पर प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। विदेश मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय मानव संसाधन गतिशीलता मंच कल संपन्न हो गया। इस मंच का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने किया। मंच का उद्देश्य भारतीय पेशेवरों और कामगारों के लिए सुरक्षित और वैध विदेश रोजगार के अवसर बढ़ाना और इस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना था। डॉ जयशंकर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सुरक्षित और कानूनी आवाजाही को बढ़ावा देना और शोषणकारी प्रथाओं को समाप्त करना सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने माइग्रेंट 2.0 पोर्टल की भी सराहना की, जो सुरक्षित और व्यवस्थित विदेश रोजगार में मदद कर रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता कतर की राजधानी दोहा में मध्यस्थ की मौजूदगी में हुई। कतर सरकार के अनुसार दोनों पक्षों ने ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई के 9 जुलाई को अंतिम संस्कार के बाद चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि दोहा वार्ता ठीक तरह से आगे बढ़ रही है और तकनीकी वार्ता भी चल रही है। उन्होंने कहा कि अगले चरण की वार्ता में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी। उधर ईरान के उप विदेश मंत्री ने बताया कि वार्ता में 14 सूत्री सहमति पत्र पर अमल का मुद्दा मुख्य रहा। ईरान और कतर ने ईरान की $6 अरब की परिसंपत्ति को मुक्त करने पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य में जारी तनाव पर भी विमर्श हुआ। ईरान ने कहा कि जहाजों को वही मार्ग अपनाना चाहिए जिसे ईरान ने मंजूर किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित नहीं करने दिया जाएगा। ईरान के अधिकारियों के अनुसार अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है और सारी वार्ताएं कतर और पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से हो रही हैं। विश्व दर्पण के लिए मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर जोरदार हमले किए।

यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि रूस ने मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिससे रिहायशी इमारतों में आग लग गई और काफी नुकसान पहुंचा। पूरे शहर में हवाई हमले के सायरन बजने लगे और कई लोग मेट्रो स्टेशनों में शरण लेने लगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में तीन और नागरिकों के कथित जबरन लापता किए जाने का मामला सामने आया है। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पंजगुर और खुजदार जिलों से इन लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं है। मानवाधिकार संगठनों ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए संबंधित लोगों की सुरक्षित और तत्काल रिहाई की मांग की है। दक्षिण अमरीकी देश वेनेजुएला में पिछले सप्ताह आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,295 हो गई है। 11,000 से अधिक लोग घायल हैं, जबकि लगभग 13,000 लोग बेघर हो गए हैं। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इस त्रासदी पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में बेल्जियम ने शानदार वापसी करते हुए सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई और लगातार 17 मैचों में अजय रहने का सिलसिला जारी रखा। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है, जहां अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल अगले साल 14 जुलाई तक 1 साल के लिए बढ़ाया। ईरान और अमरीका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता दोहा में मध्यस्थ की मौजूदगी में हुई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइचे के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री तकाइचे भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइचे के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया गया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली लौटकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाढ़ के हालात की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों राज्यों में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय अंतर मंत्रालयी दल भेजा जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा

0: को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Japanese Prime Minister Sanae Takaichi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan today. Prime Minister Narendra Modi was also present on the occasion. Prime Minister Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi later today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. The central government notified the Employees Provident Fund EPF Scheme 2026, replacing EPF Scheme 1952 as part of the implementation of Code on Social Security 2020. Under the new scheme, the mandatory EPF contribution remains unchanged at 12% of wages each from the employee and employer, while the existing 10% rate will continue to apply to notified establishments by the central government. The new scheme came into effect on 29th of the last month with its publication in the Gazette. The government issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. According to the sources, the Ministry of Electronics and Information and Technology has directed Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. The Civil Aviation Ministry has announced that India achieved a major milestone with approval of the country's first private point-in-space instrument approach procedure for helicopter operations at Undavalli Heliport. Point-in-space procedures use advanced satellite-based navigation technology to enable helicopters to conduct safe and precise instrument approaches to heliports that do not have conventional instrument landing infrastructure. The 29th National E-Governance Conference being held in Jaipur will conclude today with the presentation of the National E-Governance Awards. The awards recognize outstanding initiatives by central and state governments and other organizations in promoting excellence in e-governance. Union Minister Dr.

0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सभी का स्वागत है 100.1 एफएम गोल्ड खरा सुना पर। दोस्तों आरजे अंकित आपके साथ और सुबह के वक्त हो चुके हैं 11:10। मैं हाजिर हूं कार्यक्रम लेकर, लो आ गई उनकी याद। दोस्तों इस कार्यक्रम में मैं आप लोगों के साथ रहने वाला हूं 12 बजे तक। और दोस्तों आज हम लो आ गई उनकी याद में याद करने वाले हैं गीतकार अनजान को। भारतीय हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार तथा अपने समय के ख्याति प्राप्त शायर थे। इनका वास्तविक नाम लालजी पांडे था। अनजान के लिखे हुए गीत आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। खाई के पान बनानस वाला, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, और रोते हुए आते हैं सब जैसे, ना जाने कितने ही सदाबहार गीत अनजान ने लिखे और प्रसिद्धि की ऊंचाइयों की छुआ। अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए उनके गीत काफी लोकप्रिय हासिल करते थे। अनजान के पसंदीदा संगीतकार के तौर पर कल्याण जी आनंद जी का नाम सबसे ऊपर आता है। इनके संगीत निर्देशन में अनजान के गीतों को नई पहचान मिली थी। अनजान साहब के पुत्र समीर भी पिता के सम्मान में प्रसिद्ध गीतकार है।
1: आओ।

फिल्म डॉन से दोस्तों आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में ये गीत कल्याण जी आनंद जी का संगीत और अनजान के बोल। हिंदी भाषा और साहित्य के करिश्माई व्यक्तित्व अनजान का जन्म 28 अक्टूबर 1930 को उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी बनारस में हुआ था। बचपन के दिनों से ही उन्हें शेर व शायरी के प्रति गहरा लगाव था।

फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से दोस्तों आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। ये गीत कल्याण जी आनंद जी ने सजाया था संगीत से और अनजान ने सवारा था बोल से। शेर शायरी के अपने शौक को पूरा करने के लिए अनजान बनारस में आयोजित सभी कवि सम्मेलन में मुशायरों में हिस्सा लिया करते थे। हालांकि मुशायरों में वह उर्दू का इस्तेमाल कम ही किया करते थे, जहां हिंदी फिल्मों में उर्दू का इस्तेमाल एक पैशन की तरह किया जाता था, वहीं अनजान अपने रचित गीतों में हिंदी पर ही अधिक जोर दिया करते थे।

फिल्म याराना से दोस्तों किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे गीत राजेश रोशन का संगीत अनजान के बोल। एक गीतकार के रूप में अनजान ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1953 में अभिनेता प्रेमनाथ की फिल्म गोलकुंडा का कैदी से की। इस फिल्म के लिए सबसे पहले उन्होंने लहर ये डोले, कोयल बोले और शहीदों अमर में तुम्हारी कहानी गीत लिखे थे, लेकिन इस फिल्म के जरिए वह कुछ खास पहचान नहीं बना पाए। उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। इस बीच उन्होंने कई छोटे बजट की फिल्में भी की जिन्हें उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ।

राजेश रोशन के कंपोजिशन अनजान के बोल किशोर कुमार की आवाज में आप दोस्तों आप सुन रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। कुछ समय बाद अचानक ही उनकी मुलाकात जीएस कोहली से हुई, जिनके संगीत निर्देशन में उन्होंने फिल्म लंबे हाथ के लिए मत पूछो मेरा कौन गीत लिखा। इस गीत के जरिए वह काफी हद तक अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। लगभग 10 वर्ष तक माया नगरी मुंबई में संघर्ष करने के बाद वह 1963 में पंडित रविशंकर के संगीत से सजी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पर आधारित फिल्म गोदान में उनकी रचित गीत चली आज गोरी पिया की नगरिया की सफलता के बाद अनजान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनजान को इसके बाद कई अच्छी फिल्मों के प्रस्ताव मिलने शुरू हो गए, जिनमें बहारे फिर भी आएंगी, बंधन, कब क्यों और कहां, उमंग, रिवाज, एक नारी एक ब्रह्मचारी, हंगामा जैसी कई फिल्में शामिल थी। इसके बाद अनजान ने सफलता की नई बुलंदियों को छुआ और एक से बढ़कर एक गीत लिखे।

फिल्म बहारे फिर भी आएंगी से मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, ओपी नैयर का संगीत और अनजान के बोल। 11:37 AM हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ और शो चल रहा है लो आ गई उनकी याद, आपकी अपने चैनल पर 100.1 FM गोल्ड खरासोना पर। और आज हम याद कर रहे हैं गीतकार अनजान को, रहूंगा इस कार्यक्रम में 12 बजे तक आपके साथ। और दोस्तों आप सिर्फ 100.1 FM गोल्ड पर ही नहीं, न्यूज ऑन एयर प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप पर भी हमारा ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। अनजान के सिने करियर पर यदि नजर डाली जाए तो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए उनके रचित गीत काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। वर्ष 1976 में प्रदर्शित फिल्म दो अनजाने के लुक छिप जाओ ना गीत की कामिया के बाद अनजान अमिताभ बच्चन के लिए कई सफल गीत लिखे, जिनमें बरसों पुराने ये याराना, खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, रोते हुए आते हैं सब, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना जैसे कई

0: सदाबहार गीत शामिल है।
1: बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

फिल्म दो अनजाने से दोस्तों आप सुन रहे थे गेज किशोर कुमार शिवांगी कोल्हापुरी की आवाज में आनंद जी कल्याण जी का संगीत। अनजान के पसंदीदा संगीतकार के तौर पर कल्याण जी आनंद जी का नाम सबसे ऊपर आता है। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अनजान के गीतों को नई पहचान मिली। सबसे पहले इस जोड़ी का गीत वर्ष 1969 में प्रदर्शित फिल्म बंधन में पसंद किया गया। इसके बाद अनजान द्वारा रचित फिल्मी गीतों में कल्याण जी आनंद जी का ही संगीत हुआ करता था।

0: फिल्म लावारिस से दोस्तों किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत कल्याण जी आनंद जी का संगीत अनजान के बोल। दोस्तों गीतकार अनजान ने आपके हंसी रुख पे खाई के पान बनारस वाला दिल तो है दिल रोते हुए आते हैं सब जैसे कई प्रसिद्ध गीत लिखे।
1: सुनो सुनो अपने कानों में तेल डालकर सुनो कि बंदा अपने प्यारों को आदाब बजा लाता है अपनी अम्मा और अपनी जोरों के सर पे।

0: लूट गए चोर बाजारी, अरे लूट गई दौलत सारी। सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो,

0: टूटी सारी तो जालिम अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे, जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून

0: हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे,
1: खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे,
0: नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।

फिल्म खून पसीना से दोस्तों किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत कल्याण जी आनंद जी का संगीत अनजान के बोल। बढ़ेंगे दोस्तों कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ। आखिरी गीत होगा किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज में और इसी गीत के साथ आपका दोस्त अंकित ललेगा जैसे मिलूंगा फिर आप लोगों से बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार और अगला कार्यक्रम होगा थोड़ी देर में आप लोगों के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए 100.1 FM गोल्ड खरा सुना पर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना

0: बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलमैंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is holding annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. The summit is an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. Earlier today, Prime Minister Takaichi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi was also present on the occasion. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. External Affairs Ministry said the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. The central government notified the Employees Provident Fund EPF Scheme 2026, replacing EPF Scheme 1952 as part of the implementation of Code on Social Security 2020. Under the new scheme, the mandatory EPF contribution remains unchanged at 12% of wages each from the employee and employer, while the existing 10% rate will continue to apply to notified establishments by the central government. The new scheme came into effect on the 29th of last month with its publication in the Gazette. India has reiterated its firm stand that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global action to eliminate the menace. Addressing the UN General Assembly during the adoption of the 9th review of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, said, "A terrorist is a terrorist," and emphasized that the counter-terrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized narratives.
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause, or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation, and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
1: The Delhi Police Special Cell has arrested 4 accused in a crackdown on ISI-sponsored interstate terror and arms network. Police said the accused were planning to carry out a terror activity in the national capital on instructions of ISI handler Shahzad Bhatti and his associates. During the operation, 2 foreign-made pistols, 9 live cartridges and 5 mobile phones were recovered. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha flagged off the first batch of pilgrims of the annual Sri Amarnath Ji Yatra.

0: ম্যাচটি জিতে যায়। অন্য খেলায় ইংল্যান্ড গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোকে 2-1 গোলে হারিয়ে রাউন্ড অফ 16-এ উঠেছে। রাউন্ড অফ 16-এ বেলজিয়াম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও ইংল্যান্ড মেক্সিকোর বিরুদ্ধে খেলবে। ওভালে আজ মহিলাদের টি টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ইংল্যান্ড দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে। খেলা শুরু হবে ভারতীয় সময় রাত 11:00। প্রথম সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজকে 8 উইকেটে হারিয়ে প্রথম দল হিসেবে বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছেছে। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। ষোড়শ ভারত জাপান বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন আজ নতুন দিল্লিতে শুরু হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে ইপিএফ জমার ওপর 8.25% সুদের হার ঘোষণা হয়েছে। সারাদেশের জেলাগুলিতে আজ থেকে ভিবিজি রামজি প্রকল্পের রূপায়ণ শুরু হয়েছে। বার্ষিক অমরনাথ যাত্রার আজ সূচনা হয়েছে। বিশ্বকাপ ফুটবলের রাউন্ড অফ 32 খেলায় আজ স্পেন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে। খবর শেষ হলো, এর পরের খবর শুনুন 1:30।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে কনকলতা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री ताकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
2: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
3: कुछ से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना

কানে কথায় গোল্ডেন সময়, আপনি শুনছেন 100.1 FM গোল্ড, 100.1 FM গোল্ড।

0: weather across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also entered round of 16 in extra time victory over Senegal. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए श्री मोदी ने कहा भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया अब समाचार विस्तार से भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा फार्मास्यूटिकल्स रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी
1: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त

0: पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
1: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
2: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरी पल्ले गांव में विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जीराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जीराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश

0: सोशल मीडिया हैंडल XH या IR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और AI सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुआ। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने तथा गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपिल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India and Japan today exchanged several agreements in different fields.

কানে কথায় গোল্ডেন সময়, আপনি শুনছেন 100.1 FM গোল্ড, 100.1 FM গোল্ড।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा ने दोनों देशों के बीच परस्पर संबंध मजबूत बनाए हैं।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का

0: उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने AI के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक AI विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
0: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज AI के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय AI इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने तथा गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावारीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। निर्वाचन आयोग ने बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा कर दी। मतदान 30 जुलाई को होगा और मतगणना 3 अगस्त को होगी। बांकीपुर सीट भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण खाली हुई है, जबकि दतिया सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण खाली हुई। इसके अलावा मंजलपुर सीट भाजपा विधायक योगेश भाई नरदास पटेल के निधन के बाद खाली हुई है। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। सह मेजबान अमरीका ने राउंड ऑफ 32 के मैच में आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से हरा दिया। वर्ष 2002 के बाद नॉकआउट चरण में अमरीका की ये पहली जीत है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची ने कहा कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का

0: संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाई जी और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से जारी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की नौवीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया कि वे भारत द्वारा 3 दशक से पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के तिरुपति में किए गए राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के अनुरूप था। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई परियोजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजुलपुर में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा की। मतदान 30 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़े कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कथित तौर पर अवैध भूमि हड़पने की गतिविधियों में शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन की विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलिथीन लाओ चाय पाओ नामक एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने स्नेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits.
1: Bharat-Japan sambandh waqai बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: Earlier in the day, Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart, Sanae Takaichi, in New Delhi. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, "Mutual trust is the biggest asset in today's time, and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time." He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today,

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति। तो दोस्तों, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो जिंदगी का सबसे हसीन पड़ाव कौन सा नजर आता है? वही, जी हाँ, वो बचपन के दिन, जब ना कोई फिक्र थी ना कोई जिम्मेदारी, बस एक मस्ती थी और दोस्तों का साथ। ठीक वैसे ही जैसे किशोर दा यानी कि किशोर कुमार और आशा भोसले का ये गीत फिल्म सीता और गीता से बड़े ही प्यार से गाया गया था। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम सब भी अपने उन बंधनों को छोड़कर बचपन के उन्हीं सपनों की गलियों में वापस जा रहे हैं। हाथ में कड़क चाय का कप है, दिल में यादों का कारवां है और सामने है वो हमारी पुरानी, जी हाँ, पुरानी बचपन की यादें, बचपन की दोस्तों की टोली। तो चलिए दोस्तों, इस सुहाने सफर पर एक बार फिर साथ चलते हैं, शुरुआत करते हैं और आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स की।

दोस्तों, कहते हैं ना कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, यह एक एहसास है, एक बहाना है पुराने दिनों को याद करने का और एक जरिया है दिल की बात दिल तक पहुंचाने का। और जब इस कड़क चाय के साथ जुड़ जाए कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स की, वो मासूमियत, वो बेपरवाह हंसी और बचपन की अनमोल यादें, तो शाम का मजा दोगुना होना लाजमी है। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए और अपने हाथों में चाय का कुल्हड़ या फिर कप संभालिए, क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स की। तो चलिए दोस्तों, आज की शाम करते हैं यादों के नाम और आप सभी का इस महफिल में दिल से स्वागत है। फिलहाल अब दोस्तों, अभी आपने जो गीत सुना वो किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म सीता और गीता से, और इस गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत से पिरोया था आर डी बर्मन ने। और दोस्तों, बातों और गीतों का ये सिलसिला चलने वाला ठीक शाम के 7 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

एक आवश्यक सूचना। 2 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे से शुरू होकर अगले 2-3 घंटों के दौरान जलपाईगुड़ी के जिले के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की बहुत संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, आप जहां रहे सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, स्टूडियो में समय हो चला है 5:28 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स अपनी दोस्त ज्योति के साथ, सिर्फ और सिर्फ 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर। और दोस्तों, बात और ये गीतों का सिलसिला यूं ही चलने वाला है, जी हाँ, शाम के ठीक 7 बजे तक। तो दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए अपनी दोस्त ज्योति के साथ कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स में।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

आशा भोसले की सबसे लोकप्रिय प्रस्तुतियों में से एक, और इस गीत के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और संगीतकार जुड़ी, जी हाँ, शंकर जयकिशन ने इसे अपने मधुर धुनों से सजाया है। दोस्तों, ये उन सदाबहार नगमों में है जिसने अपनी चुलबुली अदाओं और आशा भोसले जी की दिलकश आवाज से संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। इस गीत में शरारत, नजाकत और रहस्य का खूबसूरत संगम है। इसकी धुन सुनते ही पुरानी हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। तो दोस्तों, अब जो अगली पेशकश है, बिल्कुल अगली जो पेशकश है वो हिंदी सिनेमा के सबसे सदाबहार प्रेम गीतों में से एक है। जी हाँ, गीत पल पल दिल के पास। जी हाँ, ये गीत है फिल्म ब्लैकमेल का। ये अमर गीत महान गायक किशोर कुमार की दिल को छू लेने वाली आवाज में है और इसकी मधुर संगीत बिल्कुल और स्वरबद्ध जो लिखे गए हैं, ये जो है बहुत ही अच्छी तरीके से, जिससे वो सीधे कानों में घुलते हुए दिल में उतर जाती है। और दोस्तों, इस गीत की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी है। इसमें प्रेम का कोई दिखावा नहीं, बल्कि अपने प्रिय के हर पल साथ होने का एहसास है। पल पल दिल के पास केवल एक रोमांटिक गीत नहीं, बल्कि यादों, अपनत्व और गहरे भावनात्मक जुड़ाव का सुंदर चित्रण है किशोर कुमार की आत्मीय गायकी और मन को सुकून देने वाली धुन। इस गीत को पीढ़ी दर पीढ़ी श्रोताओं का अपना प्रिय बनाती रही है। यही कारण है कि आज भी ये गीत सुनते हैं तो दिल में एक मीठी सी मुस्कान और पुरानी यादें ताजा हो जाती है। आइए सुनते हैं फिल्म ब्लैकमेल का ये सदाबहार नगमा।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

एक आवश्यक सूचना। हल्के से मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। शाम 5:15 से शुरू होकर अगले 2-3 घंटों के दौरान पूर्वी वर्धमान और पश्चिमी वर्धमान जिलों के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो दोस्तों, स्टूडियो में वक्त हो चला है 5:55 और 32 सेकेंड, यानी कि घड़ी की सुई बता रही है बिल्कुल वक्त हो चला है समाचार का। जी हाँ, क्योंकि अब ठीक 6 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार और ठीक 6:05 में सुनेंगे न्यूज इन इंग्लिश, और उसके बाद दोस्तों बात और गीतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा आपके और मेरे बीच। फिलहाल दोस्तों, आप सभी के लिए किशोर कुमार में एक गीत छोड़े जाती हूँ, यानी कि थोड़ा से अंतराल के बाद फिर से ये रिश्ता जोड़ चलेगा। जी हाँ, यानी कि कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत

0: की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
2: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defense, and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart,

0: से पूरे देश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 यानी VBG राम जी एक्ट लागू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्का परिवल्ली गांव में विकसित भारत जी राम जी योजना के राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मजदूर कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना शेयर दिया है, पैसा दिया है, वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया। ये मजदूरों के कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा कमिटमेंट है। कल एक दिन में सभी राज्यों में विकसित भारत जी राम जी योजना लागू हो गई है। 5 लाख से ज्यादा लोगों को पहले दिन ही रोजगार मिला है।
0: इस नए कानून के अंतर्गत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के बजाय 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इसके साथ ही मजदूरी दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि आखिर इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी, क्या ये बदलाव केवल रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाने तक सीमित है या इसके पीछे ग्रामीण विकास की एक नई सोच भी है, और सबसे अहम बात, इसका गांवों और ग्रामीण परिवारों पर क्या असर पड़ेगा।

0: करीब दो दशकों तक मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार की सुरक्षा देने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन समय के साथ गांवों की जरूरतें बदली हैं। आज गांव में सड़क, जल संरक्षण, डिजिटल व्यवस्था, आजीविका के नए साधन और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां भी विकास की प्राथमिकताओं में शामिल हो चुकी हैं। इसी बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नया कानून लागू किया है, जिसका उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं बल्कि रोजगार को ग्रामीण विकास से जोड़ना है। तो आइए श्रोताओं, समझते हैं कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रमुख बदलाव किए गए हैं।
1: इस कानून के तहत अब हर पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्त वर्ष में 125 दिनों के अकुशल मजदूरी आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। पहले ये सीमा 100 दिन थी। रोजगार की मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो संबंधित राज्य सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। मजदूरी का भुगतान भी सीधे बैंक या डाकघर के खातों में किया जाएगा और भुगतान साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के भीतर करने का प्रावधान है। देरी होने पर मुआवजे का भी प्रावधान है। अधिनियम के साथ मजदूरी दरों में भी बड़ा संशोधन किया गया है। अब देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अधिसूचित दैनिक मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी। राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.8 रुपए से बढ़कर 327.4 रुपए प्रतिदिन हो गई है। 21 राज्यों और प्रशासनिक इकाइयों को पहली बार 300 रुपए के न्यूनतम स्तर पर लाया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में 15-25% तक की वृद्धि हुई है, जबकि हरियाणा, गोवा, केरलम जैसे राज्यों में मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन के आसपास या उससे अधिक है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन आधारित उपस्थिति, डिजिटल निगरानी और जनता वोट जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल की गई है। चल रहे सभी कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। ईकेवाईसी वाले पुराने जॉब कार्ड नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक मान्य रहेंगे। इसके अलावा निर्बाध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार पहले ही 95,692 करोड़ रुपए की अंतरिम राशि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी कर चुकी है।
0: किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने के साथ सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि लाभार्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो। ऐसे में सवाल है कि इस बदलाव को सुचारू बनाने के लिए क्या तैयारियां की गई है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी समाचार से विशेष चर्चा में ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे ने इस विषय पर क्या कहा।
2: जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इसमें जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। यह भारत सरकार की प्राथमिकता है, इसीलिए एक सुचारू ट्रांजिशन का प्लान भारत सरकार ने बनाया है, जिससे कि हमें इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारा श्रमिक भाई अगर 30 तारीख को एक कार्य पर जा रहा है और वह कार्य अपूर्ण है, वो आगे भी चलता रहेगा, तो वह श्रमिक दूसरे दिन भी 1 जुलाई को भी बिना किसी दिक्कत के एमजी नरेगा का वह जो उसका जॉब कार्ड अभी के पास है उसी का सत्यापन हमने और रखा है, तो उसी जॉब कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हुए वह आगे भी कुछ दिनों तक विकसित भारत जी राम जी में निर्बाध तरीके से काम पा सकेगा। हम ये चाहते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो जबकि ये ट्रांजिशन आए अंडर विकसित भारत जी राम जी।
0: रोजगार उपलब्ध कराना इस नए कानून का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लेकिन इसकी सोच इससे कहीं व्यापक है। ये रोजगार को गांव के दीर्घकालिक विकास से जोड़ता है। यही वजह है कि इसमें कामों के चयन से लेकर उनके क्रियान्वयन तक हर स्तर पर ग्राम पंचायत को केंद्र में रखा गया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि कैसे ये पहल ग्रामीण भारत की विकास यात्रा को गति देगा।
1: इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्थानीय लोगों की भागीदारी से विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करेगी। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएं बनेंगी और विकास कार्यों में लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी। अधिनियम के तहत विकास कार्यों को 4 प्रमुख क्षेत्रों में व्यवस्थित किया गया है। पहला है जल सुरक्षा, जिसमें जल संरक्षण, जल संचयन और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर जोर होगा। दूसरा है ग्रामीण आधारभूत ढांचा, ताकि गांव में आवश्यक सार्वजनिक सुविधाएं और संपर्क बेहतर हो सके। तीसरा, आजीविका से जुड़ा बुनियादी ढांचा, जिससे कृषि, पशुपालन और अन्य ग्रामीण गतिविधियों को स्थायी आधार मिल सके।

0: और चौथा चरम मौसम की चुनौतियों से निपटने वाले कार्य, ताकि गांव बाढ़, सूखा और अत्यधिक गर्मी जैसी परिस्थितियों के प्रति अधिक सक्षम बन सके। इस कानून की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसे अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ जोड़कर लागू किया जाएगा। इससे विकास कार्यों की गति और प्रभाव दोनों बढ़ने की उम्मीद है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी, स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर भी विशेष जोर दिया गया है। ये कानून केवल आज के रोजगार की नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के गाँव की योजना तैयार करने का प्रयास है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में पंचायतों की इसी भूमिका और ग्रामीण विकास की नई कार्य प्रणाली पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव रोहिणी भाजी भाकरे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है वो है पंचायत। तो पंचायत ही इसका प्लान बनाएंगी, परंतु पंचायत ने प्लान बनाने के बाद यह प्लान जो है ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे एग्रीगेट हो जाएगा। और पीएम गति शक्ति जैसे बहुत अच्छे टूल्स के माध्यम से जब यह एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक प्लान बनेगा और नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के माध्यम से सारे हितधारक अगर ये देख पाएंगे कि हर एक पंचायत में किस प्रकार के काम कौन से कैटेगरी के कहां तक आए हैं और उस पंचायत का ग्राम पंचायत प्लान जो है वह कितने परसेंट तक एग्जीक्यूट हो गया है, तो इससे जो है फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत ही सुचारू रूप से हम पंचायतों को एक विकसित पंचायत की ओर बढ़ाने में सफल हो जाएंगे। विकसित भारत जीराम जी में श्रम भी है, उसका सम्मान भी है भारत देश के ग्रामीण एरिया के लिए। विकसित भारत जीराम जी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक पहल है।
1: श्रोताओं, वीपी जीराम जी अधिनियम केवल रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से सरकार रोजगार, बेहतर मजदूरी, ग्राम पंचायत आधारित योजना और स्थानीय भागीदारी को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है कि विकसित भारत का रास्ता विकसित गांव से होकर गुजरता है। ऐसे में वीपी जीराम जी अधिनियम रोजगार, आजीविका और ग्रामीण विकास को एक साथ जोड़ते हुए विकसित भारत 2047 के संकल्प को आगे बढ़ाने का प्रयास है। इसी के साथ आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: तो दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स में। तो दोस्तों मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति लेकर कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स सिर्फ और सिर्फ 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर। तो चलिए दोस्तों दूसरा सेगमेंट की शुरुआत करते हैं कोकिला कंठ लता मंगेशकर की आवाज़ से।

तो दोस्तों, इसी खूबसूरत एहसास और सदाबहार गीतों की मीठी यादों के साथ अब मुझे आपसे विदा लेने का समय आ गया है। उम्मीद है कि आज के चायर क्लासिक्स में बजने वाले मधुर गीतों ने आपकी शाम को और भी खुशनुमा बना दिया होगा। पुराने गीतों की तो यही खासियत है, ये सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि दिल की गहराइयों तक उतर जाते हैं, यादों की एक प्यारी सी दुनिया सजा देते हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मैं लेती हूं आप सभी से इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, नई बातों और सदाबहार सुरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी की हर छोटी सी खुशी का आनंद लेते रहिए। तो दोस्तों, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे, यानी कि 6:30 पर आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा। और दोस्तों, मैं आप सभी से ठीक फिर नहीं आऊंगी फिर 7:02 पर, यहाँ नहीं 107 FM रेनबो पर। तब तक दोस्तों, अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत, और जाते जाते आप सभी के लिए अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाज में एक बेहतरीन तराना छोड़े जाती हूँ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। श्रोताओं, आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर नजर डालेंगे, साथ ही चर्चा भी करेंगे। आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे समक्ष आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: धन्यवाद।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: थैंक यू प्राची। Benchmark domestic indices rise, Sensex adds nearly 580 points, Nifty settles at 24,176. India and Japan exchange agreements in fields of including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. And global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स 580 अंक बढ़ा, निफ्टी 24,176 पर बंद हुआ। भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए और कच्चे तेल के वैश्विक दाम घटे।

0: And before we begin the program, an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, आइए अब रुख करते हैं और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज 0.7% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 579 अंक बढ़कर 77,502 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 170 अंकों की बढ़त के साथ 24

0: 6,176 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में 0.5% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। इससे पहले बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुले और लगातार दूसरे दिन भी इनमें बढ़त रही। कच्चे तेल की कीमतों में कमी और सकारात्मक भू राजनीतिक रुझानों के कारण निवेशकों का आत्मविश्वास बना रहा।
1: Benchmark domestic equity indices ended over 0.7% higher today. The Sensex rose 579 points to close at 77,502. The Nifty gained 170 points to settle at 24,176. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index added 0.5% and the Small-Cap 100 index climbed more than 1.2%. Earlier markets opened on a positive note and extended their upward momentum for the second consecutive session. Investor sentiment remained upbeat, supported by softer crude oil prices and positive geopolitical developments.
0: Sensex में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंफोसिस 5.5% से अधिक, वहीं टेक महिंद्रा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में लगभग 4.5% का उछाल आया। उधर खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में लार्सन एंड टूब्रो 0.8%, मारुति में लगभग 0.5% और एक्सिस बैंक में 0.3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।
1: In the sectoral indices on the BSE, 20 out of 25 sectors ended in positive zone. Among the key gainers, IT climbed almost 4.4%, focused IT rose 4.3%, and consumer durables as well as realty added over 1.4%. In contrast, capital goods fell over 0.7%, telecommunications slipped nearly 0.7%, and power lost over 0.6%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,536 companies advanced, shares of 1,740 companies declined and shares of 182 companies remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर होकर 95.39 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। उदयन, अगर हम आज के ट्रेजेक्ट्री की बात करें कि आज किस तरीके से मार्केट ने प्रदर्शन किया और क्या प्रमुख कारक रहे जिस वजह से मार्केट का ये रुझान हमें देखने को मिला, तो आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, ये मतलब सारी जो बातें हैं एक चीज के साथ हम आराम से जोड़ सकते हैं, वो ये है कि तेल से जुड़े हुए सुर्खियाँ क्या रही, हेडलाइंस क्या रही, वो सब पॉजिटिव रही हैं कि जैसे अपने
0: दाम घट गए,
2: कुछ प्रोग्रेस इनडायरेक्ट टॉक्स में के रिपोर्ट्स आए, कतर के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। इसके अलावा और कुछ रिपोर्ट्स आए, कुछ सुपर टैंकर्स जो हैं सऊदी अरब का तेल तकरीबन 2 मिलियन बैरल्स के आसपास वर्थ ऑफ ऑयल वहाँ से निकला, ये बहुत बड़ी तादाद है जो हमारे यहाँ तो नहीं आ रही है, ये चीन जा रही है और कुछ और देशों में जा रही है, पर ये एक फ्लो ऑफ गुड पॉजिटिव हेडलाइंस, मतलब बैड न्यूज़ नहीं आ रहा है। और उसका इमीडिएट इम्पैक्ट सबसे पहले करेंसी मार्केट से एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन, वो सारा एक डोमिनो इफेक्ट पॉजिटिव, इसको वर्चुअस साइकिल बोलते हैं, वो उस तरीके से घूमता है। और आप देखेंगे कि हर जगह में कुछ लोग ये कह सकते हैं कि देखिए हम रुपए के वैल्यू में वो बात नज़र नहीं आ रही, पर आरबीआई ओवरऑल एक मैनेजमेंट कर रही है जिसमें वो फॉरेक्स रिजर्व्स, आपका करेंसी में मूवमेंट ज़्यादा ना हो उसके बारे में, तो वहाँ पे उसकी बात को थोड़ी देर के लिए हम अलग रखना पड़ेगा। पर इसके अलावा जो है बाकी जो चीज़ें हैं, आप सब जगह में एक इट्स अ रिकूपिंग, जो स्लाइड हुआ था वो ऐसा लग रहा है कि वापस आ रहा है।
1: Udayan, let's talk about specific sectors. We've seen a rally today in the IT sector. It's a very interesting trend that we've been seeing in the IT sector. You know, if you look at it overall, in the last 20 trading sessions, it tanked 17%. In the last 4 trading sessions, it was down 7%. But today, if I talk about Nifty in IT index, there is a rally of 4.64%. What's driving this rally in the IT sector? Because that's one of the major reasons we have seen the Sensex and the Nifty, you know, ending in green.
2: So you're so right, and a lot of these IT stocks, by the way, are large caps, and you know their capitalizations are large.
1: Yes.
2: And there's this whole theory going in, and I buy into that theory. Not theory. Experts are saying that a lot of the exodus of money that has happened is FPI money has been they were invested in large caps, whereas the domestic institutions went in and bought mid cap and small cap. So two different sectors of the market have got affected. So. So at some point, you know, when you keep buying, rather selling, it happens with buying also. You suddenly realize, oh, you know, maybe we have done enough. Maybe we need to do the different thing. The other very interesting thing that has happened today is maybe it happened yesterday, but it came to my notice today is two very prominent brokerages or shall we say research firms.
1: Okay.
2: Maybe brokerages would be a rather appropriate word. They have come out with notes where they are saying that it's not so bad. You know, hey, it's not so bad after all. It's good, you know, they're going to bounce back. So what I'm trying to hint,
1: it has affected the sentiments,
2: You know, subtly, that sometimes, you know, the disclaimer that you gave right in the beginning of the program. So every investor needs to think through this little bit of critical thinking, that collective wisdom, yes, it's important.
1: Yes.
2: But sometimes that wisdom has to work for you. If it doesn't make sense to you, maybe you should be thinking harder. So basically what I'm trying to say is that it is, now they've decided that, it's IT, Indian IT deserves love, and that's why it's getting it.
0: Right. Udin, ye to humare IT sector ki baat rahi, lekin hum agar FIIs ki nikasi pe ek bar gaur kare, to humne agar pichle satr ko agar hum dekhe, to usme bhi कंपैरेटिवली जो है वो कम निकासी हुई है और कॉन्स्टेंटली जो DIIs हैं वो तो सपोर्ट कर ही रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक मोमेंटम बांधता है मार्केट्स को अप करने के लिए
2: देखिए इसमें एक और थीम भी आ जाती है जब कभी सबने तब भी कहा था और अब भी ये बात है कि जब भी उनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लगेगा कि नहीं नहीं ये जो AI सो कॉल्ड AI थीम है जहाँ पे फाउंडेशनल जो काम हो रहा है चिप्स बन रहे हैं मॉडल्स बन रहे हैं उनके ऊपर जो इतना पैसा लग रहा है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है जौन से ऐसे दिन होंगे जहाँ पे लोगों को नर्वसनेस लगेगी तब भारतीय मार्केट्स में उनका इंटरेस्ट पड़ेगा तो ये वही वाली बात है किस दिन विच साइड ऑफ द बेड यू गेटिंग ऑफ कैसे आप सो के उठे कौन से बिस्तर के कौन से साइड से उठे उस हिसाब से आपका मूड आपका बन रहा है तो इसलिए जो है भारत के जो निवेशक हैं उनका जो रोल है कई लोग उसको बहुत सिनिकली देखते हैं ये तो मतलब अजीब ही लगता है मेरे जैसे लोगों को पर वो एक स्टेबिलिटी उन्होंने बना के रखा हुआ है और उनका जो योगदान है वो जबरदस्त है सो दिस इज कि डोमेस्टिक जो पार्टिसिपेशन आप और हम जैसे लोग और इस प्रोग्राम को सुनने वाले लोग जो भारत की प्रगति में एक हिस्सेदारी ले रहे हैं
0: जी
2: वो एक बहुत जबरदस्त कहानी है जिसके बारे में उतनी बात अभी तक नहीं हुई जितनी होनी चाहिए हो रही है बट दिस इज अ ट्रेमेंडस स्टोरी व्हिच प्रोबेबली नीड्स मोर प्ले देन इट्स गेटिंग
1: राइट Udin, would you say that, you know, India and Japan, the Japanese Prime Minister is, of course, in India on a three-day visit, and a slew of agreements were, signed, and there were memorandum of cooperations today that were agreed upon. So would you say that, and Japan has also announced $10 billion fresh investment in India across AI, defense technology, and energy security. Would you say that is also, you know, added a bit to the momentum, positive momentum in the markets, or is it a different
2: thing? I don't think people in the markets would be so...
1: Okay.
2: See, these things will play out in the future. Right. Markets typically don't look so far into the future.
1: Right.
2: They reward, if you see unencumbered cash flows coming in, they'll immediately go and reward. Yes, one can always argue that AI is out in the future and so on and so forth. So sometimes it's also a FOMO, you know, fear of yeah. missing out. You know, you don't want to miss out on something which is once in a generation. So wisdom is different, but that is important, the things that you're talking about, because Japan has been doing business with us for ages now.
1: Ages, yes.
2: And if you ask me, in my opinion, that relationship

0: relationship has been underdone, the bromance or whatever you want to call it, that relationship that we have, it probably has got, it has been underserved despite whatever breadth it has, and it probably is the time to make up for lost time, and it's not a day too late.
1: Right. We will talk about the India-Japan, you know, agreements a little later in the program. But right now, I think, Prachi, let's, why don't you talk about the Asian markets and European
2: markets.
1: Bilkul,
2: Anubha. Shrotaon, aaiye ruk karte hain Asia aur European bazaar ki taraf. Pramukh Asiai share suchakanko mein aaj giravat aayi. Chips sector mein giravat ki wajah se Dakshin Korea ka Kospi lagbhag 8% phisla. Japan ka Nikkei 2.5%, Chin ka Shanghai composite suchakank 2%, aur Taiwan ka Taiex aadhe प्रतिशत से अधिक लुढ़का। वहीं सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1% से अधिक और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक लगभग 0.8% ऊपर बढ़ा। वहीं बात यूरोपीय शेयर बाजार की करें तो यूरोपीय शेयर बाजार आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी का डैक्स 1% से अधिक, फ्रांस का कैक 0.8% से अधिक, जबकि लंदन का फुटसी 0.5% ऊपर कारोबार करता नजर आया। लगभग 8% हम कॉस्पी में देख रहे हैं गिरावट। महोदय, किस तरीके से आप इसे देखते हैं और ये क्यों किस तरीके से आ रहा है, आप प्लीज इसे बताएं।
0: देखिए, वो एक रन अप था जो बिल्कुल तेजी के साथ होता चला गया, और कई बार क्या होता है, चिप्स आप जैसे हमारे भारतीय बाजारों में देखते हैं कि पहले एक सर्टन सेक्टर में आपको पसंद आने लगे लार्ज कैप, फिर आपने कहा कि नहीं नहीं लार्ज कैप तो ये तो बहुत महंगे हो गए, थोड़ा और नीचे चलते हैं, मिड कैप में चलते हैं। तो उस तरीके से जब आपने देखा TSMC और डच कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ जो डिज़ाइन करती है चिप्स, तो वो जब आपको लगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप सैमसंग और हाइनेक्स पे चले गए जो कि आपके दे आर आउटस्टैंडिंग लीडिंग मेकर्स, पर आप उस वहाँ पे फोकस करने लग गए। और इसके अलावा तब हेडलाइंस भी ऐसी थी, एनवीडिया ने हैंडशेक किया, तो उससे आपको सारे जो कंपनीज हैं आपस में एक दूसरे के साथ एक जबरदस्त हैंडशेक कर रहे हैं।
2: मैं यही बल्कि कहना भी चाह रही थी कि अभी यही बाजार है जो अपनी ऊंचाइयों पर भी गया और वही बाजार है जो आज हम देख रहे
0: तो
2: हैं।
0: तो जहां पर भी अगर जब हेडलाइन जब आप फ्यूचर की तरफ देखते हैं, जैसे अब थोड़ी देर पहले बात होती थी व्हेन थिंग्स आर आउट इन द फ्यूचर इट्स अ ग्रोथ सेक्टर, आपको नहीं मालूम कि ये आप किसी को कह नहीं सकते कि आज ये आपने पिछले 3-4 महीने पहले ये बोला था ये क्यों नहीं हुआ, ये दिस इज नॉट राइट। 4 months डाउन द लाइन इट्स प्रोबेबली वी आर टॉकिंग अबाउट 3-4 years चीजें होंगी, सो पीपल आर रेजिंग मनी राइट नाउ। तो उसमें वहां पे जब आपको हेडलाइन ऐसा कुछ आता है, बिकॉज ये कन्विक्शन जो है आप एक जैसे लीप ऑफ फेथ कहते हैं ना, मेरे को मालूम नहीं यहाँ पे सर्कस कितने लोगों ने रियल लाइफ में देखी है, तो वहाँ पे ट्रेपीज आर्टिस्ट होते हैं जो हवा में झूलते हैं, तो एक आदमी छलांग मारता है या लेडी छलांग मारती है, उनको पकड़ा जाता है, दूसरे लटक रहे होते हैं वो पकड़ते हैं, उसको लीप ऑफ फेथ बोला जाता है। तो ये लीप ऑफ फेथ की तरह है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने कितना कन्विक्शन है, आपके फेथ है,
2: यानी सुर्खियां पढ़ करके आप
0: जी आपको यह है कि आपने मैंने वो छोड़ दिया है जो मैंने पकड़ी थी और मेरा जो साथी है वो मेरे को पकड़ लेगा, वैसे तो नीचे नेट है जमीन पर, बट दिस इज कॉल्ड द लीप ऑफ फेथ। तो लीप ऑफ फेथ जब डगमगाने लगती है या उसमें कमजोरी आ जाती है तो आप वो देख रहे हैं जो आज आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ सुर्खियां ऐसी निकली कल जिसके वजह से देयर इज दिस होल रिविजन कि नहीं नहीं मे बी वी आर जस्ट गेटिंग टू बुलिश आउट देयर। तो ये चीजें जो एडजस्टमेंट होती है, समटाइम्स यू आर मूविंग ऑन द फ्यूल्ड बाय सेंटिमेंट, तो सेंटिमेंट का जो फ्यूल है जब वो थोड़ा कम होता है तो आपका गियर लोअर गियर में आ जाता है।
1: लेट्स मूव ऑन टू द यूएस मार्केट्स। वॉल स्ट्रीट एंडेड ऑन अ नेगेटिव नोट यस्टरडे एज चिप स्टॉक्स declined. Among the major indices, the Nasdaq composite lost nearly 0.7%, the S&P 500 fell 0.2%, while the Dow Jones Industrial Average ended marginally lower. Meanwhile, Federal Reserve Chairman Kevin Warsh said at an event that he would remain firmly committed to the U.S. Central Bank's 2% inflation target and would disappoint anyone expecting loose monetary policy. On the macroeconomic front, non-farm payroll employment rose by 57,000 in June. According to the Labor Department report, the unemployment rate dipped to 4.2% last month from 4.3% in May. Well, then just want to ask you a very quick question. This, you know, the statement coming out of the new Fed chair, Kevin Warsh, saying he's firmly committed to, you know, maintaining the 2% inflation rate and going to disappoint anybody who expects an easier monetary policy. This is despite, you know, President Trump has been insisting of, you know, he's been calling for interest rate cuts. What does it, you know, indicate?
0: Well, he's working on data. And the data is showing that the labor market is holding well. They're still creating jobs and people are not firing. Normally, what used to happen is at some point during some cyclical periods, people would be getting laid off.
1: Right.
0: But after the COVID, that's the prevailing wisdom, that after COVID, when hiring was such a problem, people are going slow. They're saying that, okay, we're not going to let go of people. So they're holding it on. So economists call this, you know, when people are really well employed, employed to the capacity, economy's capacity, it's called full employment. So a lot of people are arguing that US economy is near full employment levels. So he doesn't have a worry about employment. He has a worry about inflation. So that's what he's trying to address.
2: Right. आगे बढ़ते हैं. भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की. संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से हैं. दोनों ही देश आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को समझते हैं.
3: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं. इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है. इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे. एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी.
2: प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रौद्योगिकी साझेदारी भारत जापान सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होगा.
3: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी. इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है. भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं. जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा.
2: उदयन, अभी प्रधानमंत्री को हमने सुना, उन्होंने कहा कि जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर जो क्षमता है उसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति शक्ति देगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर हम भी ऑफकोर्स कम्पीट कर रहे हैं, तो हमारी जो एक परिकल्पना है विकसित भारत की, उसको किस तरीके से ये साकार करने में मददगार रहेगा?
0: देखिए, कई बार कई चीजें हैं, आपको जीरो से स्टार्ट करने में टाइम लगता है. तो अगर आप वो पार्टनरशिप से करते हैं, तो जहाँ पे आपके दूसरे एक पार्टनर कंट्री हैं, जिस उनके जो स्ट्रेंथ्स हैं, उन जो जहाँ पे वो सक्षम ज़्यादा हैं हमसे, वो चीज़ें वो अपने टेबल पे लाते हैं और हम हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो कैपेबिलिटी, वो हम मेज़ पे लाते हैं. तो ये वो वाली अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जहाँ पे हमारे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी जो डिज़ाइनिंग जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसको मिलके हम वो चीज़ें प्रोड्यूस करें. क्योंकि देखिए, एक पर्टिकुलर देश का नाम लेते हुए ये कहना ज़रूरी है, दोनों देश दूध के जले हैं
1: जी.
0: तो छाछ भी वो फूक फूक के पी रहे हैं
1: जी.
0: ठीक है, तो वो क्रिटिकल मिलेनियल से जुड़ा हुआ जो एक्सपीरियंस है, दूसरी चीजें जो है, उसको दिमाग में रखते हुए ऑब्वियसली ये इन्फ्लुएंस कर रहा है. और ये जरूरी भी चाहिए आपको, क्योंकि यू कैन नॉट जस्ट स्टॉप. कार प्रोडक्शन बंद हो गया या कुछ और हो गया, डिस्ट्रप्शन हो गया, जस्ट बिकॉज कोई एक स्टेटमेंट चली गई, तो वो उसके ये वो तो छोटी सी बात है. ये जरूरत भी है और ये लेवरेज किया जाए. जैसे कि मैंने कहा, ये अंडर सर्व था, ये अब वहां पे पहुंच उस पायदान में जा रहा है, उस स्तर में जा रहा है जहां पे से होना चाहिए था.
1: राइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर रिलेटेड स्टोरी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड दैट इंडिया जापान रिलेशंस आर ट्रूली वेरी स्पेशल एंड देयर आर मेनी शाइनिंग एग्जांपल्स ऑफ द सक्सेस ऑफ द इकोनॉमिक पार्टनरशिप. एड्रेसिंग इंडिया

0: kilogram a short while ago.
1: Multi commodity exchange mein agast anubandh wala sona 0.1% ki tezi ke saath 144540 rupaye prati 10 gram par tha aur sitambar anubandh wali chandi 0.5% ki badhat ke saath 231443 rupaye prati kilogram par karobar kar rahi thi. Udyan humne dekha pehle ki abhi kuch 2-4 din pehle ki agar baat kare to thode se corrections aaye hamein nazar aaye the jisse ki bahut logo ke dil mein khushi bhi hogi bahut logo ko shayad dukh bhi ho lekin abhi humne dekha ki thoda sa ek marginal rise dekhne ko mila hai to aap kis tarike se aane wale waqt mein price ko predict karte hain
2: dekhi agar ye geopolitical tensions bani rehti hain financial system mein nervousness rehti hai tab to wo sone ke daam mein uchhal zarur aayega
1: ji
2: agar aapke kendriya bank jo khareedari kar rahi thi unki wo ek bahut bada karan tha to agar ye cheeze control mein rehti ye extra kuch nahi hota hai to ye isi star pe rahega iske niche jaate hue main dekh nahi pa raha hu aur ye jo nivesh ke liye jo dekhte hain unko golden rule hai 5-10% 100 rupaye agar aapke nivesh hai investments hai 5-10 rupaye se exceed nahi hona chahiye
1: बहुत बहुत धन्यवाद उद्यन कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए
2: धन्यवाद
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise. Sensex adds nearly 580 points. Nifty settles at 24,176. India-Japan exchange agreements in fields including economic and energy security, pharmaceuticals and AI, and global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत से ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्ष

0: वर्षों में हम भारत में काइजेन फिलोसॉफी यानी कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कलिरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে, দু সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আর্থিক লেনদেন নিয়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছে হলফনামা তলব করেছে। HDFC ব্যাঙ্কের সেন্ট্রাল প্লাজার ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে আগামী বুধবার 8ই জুলাই এই হলফনামা জমা দিতে হবে। তোলাবাজি, আর্থিক প্রতারণা সহ একাধিক অভিযোগে ধৃত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বিধাননগর পুর নিগমের প্রাক্তন মেয়র পরিষদ দেবরাজ চক্রবর্তীকে 7 দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। তাকে আজ বারাসাত আদালতে তোলা হয়। সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, দেবরাজের বিরুদ্ধে 2টি মামলা করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি প্রমোটিংয়ের জন্য 33 লক্ষ টাকা চেয়ে হুমকির অভিযোগে। ওই মামলায় অভিযোগকারীর গোপন জবানবন্দিও নথিভুক্ত হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আপাতত কোনো মিডিয়া ট্রায়াল বা মানহানিকর ও অবমাননাকর মন্তব্য করা যাবে না বলে কলকাতা হাইকোর্ট রায় দিয়েছে। বিচারপতি কৃষ্ণা রাবের বেঞ্চ 3রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন এই নির্দেশ বহাল থাকবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন। উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন উত্তর ওড়িশা পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে একটি নিম্নচাপ অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা ডক্টর হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, এর প্রভাবে আগামীকাল থেকে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
1: এর প্রভাবে আমাদের রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে, মূলত উপকূল জেলা এবং পশ্চিমের জেলাগুলোতে 3 থেকে 6 তারিখের মধ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী 24 ঘন্টায় দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে অতি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত, বজ্রবিদ্যুৎ সহ কোথাও কোথাও দমকা হওয়া, একটু জায়গায় 40 থেকে 50 যেতে পারে।
0: মৎস্যজীবীদের আগামী 5 দিন সাগরে পাড়ি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। শেষ করার আগে স্থানীয় সংবাদ।
2: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে বিশাল শর্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
3: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की GDP ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक DNA को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
2: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आज की बातचीत से ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अब कोई विकल्प नहीं बल्कि सुशासन का एक अनिवार्य स्तंभ है। उन्होंने AI के उपयोग के महत्व पर बल दिया। जयपुर में आज 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के समापन सत्र में श्री सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य

0: को प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक सोच में मूलभूत बदलाव की जरूरत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करना बंद कर दिया है। धारचूला के उपमंडल मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने बताया कि वर्तमान मौसम की स्थिति का आकलन करने के बाद प्रशासन परमिट जारी करने की प्रक्रिया पर फिर से विचार करेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: इन हर एड्रेस Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Earlier, India and Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defense and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal today said that investments have emerged as a key driver of India's strategic partnership with Japan and are expected to further strengthen bilateral ties. Addressing the Indo-Japan strategic dialogue on shaping the Asian century organized by a private television channel, Mr. Goyal said, opportunities are opening up for India's skilled workforce, while the government's focus remains on ensuring equitable development for all under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. Talking about India's handling of the situation during the West Asia crisis, Mr. Puri said that for a long time the government controlled the prices of petrol and diesel and reduced the duties imposed on them. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting Chanchal Kumar paid a special visit to the exhibition Living Heritage in Metal, Bamboo and Clay, Traditional Utensils of Northeast India at IGNCA in New Delhi today. The exhibition is inspired by Prime Minister Narendra Modi's vision of the Northeast as Ashtalakshmi, highlighting the region's immense cultural richness, natural abundance, spiritual heritage and developmental potential. During the visit, Mr. Kumar appreciated the carefully curated display featuring Longpi pottery from Manipur, Larnai pottery from Meghalaya, bell metal craft from Assam and a diverse range of traditional wooden crafts and basketry from across the Northeast. In view of continuous rainfall in Uttarakhand's

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी

0: की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
2: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
3: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
2: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा।

0: कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरलम में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई।

0: को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia Initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, "Trust is the biggest asset in today's time, and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time." He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today, and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both the countries.
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में

0: আমি ভালোবাসা, আমি এসে গেছি।
1: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের

அச்சு கத்து ட்ரிக்ஸ்.

0: बाजी मात।
1: लाइट्स ऑन, कैमरा
2: रोलिंग,
1: एक्शन।
3: চিত্রধ্বনি রাউন্ডে শুনবেন একটি সিনেমা সংলাপ। সিনেমায় এই সংলাপের শেষেই ছিল একটি গান, আপনাকে বলতে হবে সেই গান কোনটি। উত্তর দেবেন হোয়াটসঅ্যাপ বা SMS করে, আমাদের নাম্বার 9903059992। উত্তরের সাথে অবশ্যই নিজের পুরো নাম আর লোকেশনটা লিখবেন।
0: চিত্রধ্বনি
4: চিত্রধ্বনি।
5: আচ্ছা নিনি, তুমি বোর্ডিং স্কুলে যেতে চাইলে না কেন? ভালোই তো হতো,
6: কিন্তু তারপর মাসিমণি,
5: তারপর লেখাপড়া শিখতে, মানুষ হতে,
6: তারপর সেই তো ফিরে আসতো তো মামার কাছে।
5: মানে
6: ঠিক বুঝতে পারছো না মাসিমণি, মামা হয়তো আমাদের ভালোবাসেন, কিন্তু যিনি মামি হবেন তিনি আমাদের চান না।
5: না না লিলি, এ তো অনেক ভুল ধারণা।
6: না মাসিমণি, আমরা যে মামার গণগ্রহ, আমাদের মা ওইভাবে মারা গেছে, জানি না বাবা বেঁচে আছেন কিনা, আর থাকলে কোথায় যা আছেন।
5: লিলি,
6: আমি তো ভাই বোনদের মধ্যে বড়, তাই ওদের দেখাশোনা আমাকে করতে হবে। শুধু তুমি যদি একটু সাহায্য করো মাসিমণি, বলো সাহায্য করবে?
5: আরে ঠিক আছে, পরে কথা হবে। হ্যাঁ
6: কি রে,
5: আগে চলতে তো পারবি?
7: অনেকদিন গান শোনাওনি মাসিমণি। হ্যাঁ মাসিমণি, আজকে তোমাকে গান শোনাতে হবে।
5: আচ্ছা আচ্ছা, হবে খুব
7: ভালো মাসিমণি, গান শোনাও।
0: চিত্রধ্বনি চিত্রধ্বনি।
8: আবারও আমরা ফিরে আসছি ঠিক 11:10 100.1 FM গোল্ডের স্টুডিওতে।
0: বাজিমাত।
9: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে ভবতারিণী। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
10: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है, हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
9: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
10: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
9: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजेलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless.
10: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
2: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. India and Japan today agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both the sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil today reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility requiring sustained collaboration among central ministries, state governments, urban local bodies, scientific institutions and local communities. The minister said this while chairing the 19th meeting of the Empowered Task Force, that is ETF, on River Ganga. He emphasized that strengthening sewage infrastructure, promoting reuse of treated wastewater and conserving wetlands and biodiversity will collectively accelerate the vision of an Aviral and Nirmal Ganga. He added that these acts will also ensure long-term water security and ecological resilience across the Ganga basin. Vice President C.P. Radhakrishnan interacted with 40 participants of MP Lead Fellows at Uparashtrapati Bhavan today. In his address highlighting the importance of constitutional values, Mr. Radhakrishnan said, "Democracy flourishes when citizens uphold their duties along with their rights." The Vice President urged the fellows to learn with curiosity, innovate fearlessly, and remain committed to the larger national interest, expressing confidence that the MP Lead Fellowship would nurture future nation builders committed to a developed and self-reliant India. The Ministry of Civil Aviation today launched the Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. The upgraded digital platform aims to strengthen health surveillance of international travelers through real-time coordination among health, immigration and surveillance agencies for early detection of at-risk passengers. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति

0: सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
0: आर्थिक दुनिया, सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। इसमें जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान और समुदाय की भागीदारी से लेकर हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, बेहतरीन कोचिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण शामिल है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। फीफा विश्व कप में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच अमेरिका के इंगलवुड में लॉस एंजल्स स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, "When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits." He said, "Both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound." The Prime Minister said, India and Japan reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless.
0: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान

0: মাগারে। কিরে খামলি কেন, বাজা
1: গামাপা মাগারে।